अंतर काल किछ साथ न चाले, जो दिसे सब तिसे मया। आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर राम हृदय ले पार पया। मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा घर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदर, साकत जंजाल पराल पया। जा आए सा तिन्हें पठाए, चाले तिन्हें बुलाए लया। जो किछ करना सो कर रहया, बक्सण हारे बक्स लया। जिन एहो चाखिया राम रसायन, तिनकी संगत खोज पया। रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदारथ शरण पया। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते बिरकत पया। आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए लिया। राम कली दखनी महला पहला, जत सत संजम साच दृढ़ाया। साच सबद रस लीना, मेरा गुरु दयाल सदा रंगलीना। एहनस रह एक लिव लागी, साचे देख पतीना रहाओ। रहे गगनपुर दृष्ट समय सर, अनहत सबद रंगीना। सतबंद कुपीन परपूर लीना, जेवा रंग रसीना। मिले गुरु साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना। एक मैं सर्व सर्व मैं एका, इह सतगुरु देख दिखाई। जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लखन न जाई। दीपक ते दीपक परगासया, त्रिपवन ज्योत दिखाई। सच्चे तखत सच महली, बैठे निरपो ताड़ी लाई। मोहे गया बैरागी जोगी, कट कट किंगरी वाई। नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुरु सच सखाई। राम कली महला पहला, अहट हसण मड़ी कर छाया। तरण गगन कल तारी, गुरमुख के ती सबद उदारी। संतो रहाओ ममता मार हो मैं सो खै, त्रिपवन ज्योत तुम्हारी। ममता मार मने मैं राखे, सतगुरु सबद विचारी। तिन्नी सुरत अनाहद वाजे, कट कट ज्योत तुम्हारी। पर पंच बेण तही मन राख्या, ब्रह्म अगन पर जारी। पंच तत्व मिल एहनस दीपक, गुनिर्मल ज्योत अपारी। रव सस लोके एह तन किंगरी, वाजय सबद निरारी। शिव नगरी में आसन औदु, अलक अगम अपारी। काया नगरी अहमन राजा, पंच वसे विचारी। सबद रवे आसन कर राजा, अदल करे गुणकारी। काल बिकाल कहे तह बपरे, जीवत मुआ मन मारी। ब्रह्मा विष्णु महेश इक मूरत, आपे करता कारी। काया सोद तरे पव सागर, आत्म तत्व विचारी। गुर सेवा ते सदा सुख पाया, अंतर सबद रव्या गुणकारी। आपे मेल लये गुण दाता, होमै तृष्णा मारी। त्रैगुण मेटे चौथे वर्त, एहा भगत निरारी। गुरमुख जोग सबद आत्म चीने, हृदय एक मुरारी। मनुआ अस्थिर सबद सबदे राता, एहा करनी सारी। वेद बाद ना पाखंड औदु, गुरमुख सबद विचारी। गुरमुख जोग कमावे औदु, जत सत सबद विचारी। सबद मरे मन मारे औदु, जोग जुगत विचारी। माया मोह पवजल है अवधु, सबद तरे।

मुहया औदु निकसै सबद विचारी आपे बक्से मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी। राम कली महला तीजा स्पदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सर में दिया मुंद्रा कन्नी पाए जोगी खिंता कर तू दया। आवण जान विभुत लाए जोगी इतना तीन पवन जिण लया। ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजय हर त्यों रह लिवलाए रहाओ। संत संतोख पत कर चोली जोगी अमृत नाम पुगत पाई। ध्यान का कर डंडा जोगी सिमनी सुरत बजाई। मन दृढ़ कर आसन बैस जोगी तातिर तेरी कल्पना जाई। काया नगरी मह मंगण चढ़े जोगी ता नाम पल्लै पाई। इत कंगरी ध्यान न लागै जोगी ना सच पल्लै पाए। इत कंगरी सांत न आवै जोगी अभिमान न विचो जाए। पौ पाओ दोए पत लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी। गुरमुख हो वै ता तंती वाजै इन बिद तृष्णा खंडी। हुकम बुझै तो जोगी कहिए एक स्यों चित लाए। सहसा टूटै निर्मल होवै जोग जुगत इव पाए। नदरी आवदा सब किछ विनसै हर तेती चित लाए। सतगुर नाल तेरी पावनी लागै ता एह तो जी पाए। एहो जोग न होवै जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करे। गृह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड़ा तृष्णा माया। अनेक जतन पेख करे जोगी रोग न जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए। गुरमुख हो वै सोई बूझे जोग जुगत सो पाए। जोगे का मार्ग बिखम है जोगी।

गुरमुख हो वै सो पूजा जाने पाणा मन वसाई, पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई। अपना आप न पछाणे संतो कूड़ करे वडियाई, पाखंड की न जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई। जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित किन ही पाई, एह मनुआ सुन समाध लगावे ज्योति ज्योत मिलाई। सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे संत संगत मिलाई, गुरमुख गावे आप गवावे दर साचे सो बापाई। साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिवलाई, है पंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई। सब किछ आपे आप वर्ते नानक नाम वड़ियाई, राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी। मिल सब दे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी, सच्चा नाम वसिया कट अंतर करते आप सवारी। रहाओ पारस परते फिर पारस होए हर जियो अपनी कृपा तारी, एक पेख करे फिरे अभिमानी तिन जुए बाजी हारी। एक अंदिन पगत करे दिन राती राम नाम उरतारी, अंदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी। पै बिन पगत न होई कभी पै पाए पगत सवारी, माया मोह सबद जलाया ज्ञान तत् विचारी। आपे आप कराए करता आपे बख्त पंडारी, किसकिया गुणा का अंत न पाया होगा वा सबद विचारी। हर जियो जपी हर जियो सलाही विच्चो आप निवारी, नाम पदारथ गुरते पाया अखुट सचे पंडारी। अपने आप भगता नो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी, तिन साचे नाम की सदा पुख लागी गावन सबद विचारी। ज्यो पिंड सब किच है तिसका आखण बिखम विचारी, सबद लगे से ही जन निस्तरे पौजल पार उतारी। बिन हर साचे को पार न पावे बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर सबद सवारी। काया कंचन सबदे राती साचे नाए प्यारी, काया अमृत रही पर पूरे पाईए सबद विचारी। जो प्रभ खोजे तेई पावे होर पूत मुए अहंकारी, बाजी बिन कह सेवक सेवे गुर के हेत प्यारी। तो जोगी तत् ज्ञान बिचारे हो मैं तृष्णा मारी, सतगुर दाता तिने पछाता जिसनो कृपा तुम्हारी। सतगुर ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी, अजिचर अंदर सास तिचर सेवा की चै जाए मिलिए राम मुरारी। अंदिन जागत रहे दिन राती अपने प्री प्रीत प्यारी, तन मन वारी वार घुमाई अपने गुर विट्टो बलिहारी। माया मोह बिनस जाए।

खजाना गुर ते पाया त्रिपत रहे आगाई संतो गुर मुख मुकत गत पाई एक नाम वसिया कट अंतर पूरे की वड़े आई रहाओ आपे करता आपे पुगता देदा रिजुक सबाई जो किच करना तो कर रहया अवर न करना जाई आपे साजे सृष्ट उपाय फिर सिर तंदै लाया किसे करे वो ता सुख पावो सतगुरु मेल मिलाई अपना आप उपाय अलख न लखना जाई आपे मार जीवाले आपे तिसनो तिल न तमाई एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई ते वड पागी जिन्नी एको जाता सचे रहे समाई आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कह न जाई आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पुलाई वड्डा दाता गुरमुख जाता निगरी अंध फिरे लोकाई जिन्नी चाख्या तिना साध आया सतगुरु बुझ बुझाई इकना ना वो आप पुलाए इतना गुरमुख दे बुझाई सदा सदा साला हो संतो तिस दी वडी वड्याई तिस बिन अवर न कोई राजा करत पावस बणत बनाई नियाओ तिसे का ए है सद साचा विरले हुक्म मनाई तिसनु प्राणी सदा त्यावो जिन गुरमुख बणत बनाई सतगुरु पेटे सो जन सी जय चित हृदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा बाणी तब दे सुनाई नानक सुन वेख रे

किया पर विरत पसारा, किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल पुअंगम सादे, मुहे दीन हर हर आराधे। तेरा परोसा प्यारे, आना जाना वे सारहाओ, किन्ही गृह तज खण खंड पाया, किन्ही गृह तज वन खंड पाया, किन्ही मोन अतूत सदाया, कोई कह तो अनन पगोती, मुहे दीन हर हर ओट लीती। किन्ही कहया हो तीरथवासी, कोई अन तज पया उदासी, किन्ही पवन सब तरती करया, मुहे दीन हर हर दर परया। किन्ही कहया मैं कुले वडे आई, किन्ही कहया बाह बहु पाई, कोई कहे मैं तने प्रसारा, मुहे दीन हर हर आधारा। किन्ही कुकर निरत कराई, किन्हों वरत नेम माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मुहे दीन हर हर हर त्याया। किन्ही सिद्ध बहुत चेटक लाए, किन्ही पेक बहुत ठाट बनाए, किन्ही तंत मंत बहु खेवा, मुहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत क्यों मंडत, कोई करे आचार सुकर्णी, मोह दीन हर हर हर सरणी। सगले कर्म तरम जुग सोदे, बिन ना वे एह मन न परबोदे, कहो नानक जो साध संग पाया, दूजी तृष्णा महासीत लाया। राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी काले देहरा करया, उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ मैं जिन तू राखया, राखन हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना रहा, जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी, जिन दिए तुद बंता अर्मिता, तिस ठाकुर को रख ले चीता, जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक बनना, तिस ठाकुर की रहो मनम सरना, क्षति अमृत जिन भोजन दिए, अंतर थान ठहरावन को किए, बसदा दियो बर्तन बलना, तिस ठाकुर के चित रख चरना, पेखन को नेत्र सुनन को करना, हसत कमावन वासन रसना, चरण चलन को सिर कीनो मेरा, मन तिस ठाकुर के पूजो पैरा, अपवित्र पवित्र जिन तू करया, सगल जोन में तू सिर तरया, अब तू तीज पावे नहीं तीजे, कारज सवरे मन प्रभ तयाई जे, इहां उहां एक है ओही, जत कत देखिए तत तत तोही, तिस सेवत मन आलस करे, जिस विसरी है इस निमख न करे, हम अपराधी निर्गुने आरे, ना किथ सेवा ना कर मारे, गुरु बहुत वट पागी मिलिया, नानक दास संग पाथर तरिया। राम कली महला पंजवा, काहू बिहावे रंग रस रूप, काहू बिहावे माए बाप पूत, काहू बिहावे राज मिलक वापारा, संत बिहावे हर नाम अदारा, रचना साच बनी सबका एक तनी रहाओ, काहू बिहावे वेद अरबाद, काहू बिहावे रचना साध, काहू बिहावे लपट संग नारी, रंग संत रचे केवल नाम मुरारी, काहू बिहावे खेलत जुआ, काहू बिहावे अमली हुआ, काहू बिहावे पर दर्ब चुराए, हरजन बिहावे नाम से आए, काहू बिहावे जोग तप पूजा, काहू रोग सोग परमीजा, काहू पवन तार जात बिहाए, संत बिहावे कीर्तन गाए, काहू बिहावे दिन रैन चालत, काहू बिहावे सो पिड़ मालत, काहू बिहावे बाल पड़ावत, संत बिहावे हर जस गावत, काहू बिहावे नट नाटक नृत्य, काहू बिहावे जिया हृत्य, काहू बिहावे राज में डरते, संत बिहावे हर जस करते, काहू बिहावे मता मसूरत, काहू बिहावे सेवा जरूरत, काहू बिहावे सोदत जीवत, संत बिहावे हर रस पीवत, जित को लाया तित ही लगाना, ना को मूड नहीं को स्याना, कर कृपा जिस दे वह नाओ, नानक ताके बल बल जाओ। राम कली महला पंजवा, दावा अगन रहे हर बूट, मात गर्भ संकट ते छूट, जाका नाम सिमरत भौ जाए, जाका नाम सिमरत पौ जाए, जिते तैसे संत जना राखे हर राय,
ऐसे राखन हार दयाल, जतकत देखो तुम प्रतपाल रहाओ। जल पीवत ज्यों तिखा मिटंत, तन बिग कै गृह आवत कंत। लोभी का तन प्राण आधार, त्यों हर जन हर हर नाम प्यार। किरसानी ज्यों राखे रखवाला, मात पिता दया ज्यों बाला। प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, त्यों हर जन राखे कंट लाए। ज्यों अंधले पे खत होए आनंद, गूंगा बकत गावे भौछन। पिंगल पर्वत पर तय पार, हर के नाम सगल उदार। ज्यों पावक संग पीत को नास, ऐसे प्राचत संत संग विनाश। ज्यों साबुन का पर उजल होत, नाम जपत सब भ्रम पौ खोत। ज्यों चकवी सूरज की आस, ज्यों सात्रक बूंद की प्यास। ज्यों कुरंक नाद करन समान, त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पेता आए चीत। दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार। सब थान देखे नैन अलोए, तिस बिन दूजा अवर न कोए। प्रम पै छूटे गुर प्रसाद, नानक पेख्यो सब बिस्माद। राम कली महला पंजवा, जी जंत सब पेखी है। प्रभ सगल तुम्हारी तरना, अहमन हर के नाम उदार ना रहाओ। किन में थाप उथाप है कुदरत, सब करते के कारना। काम क्रोध लोभ चुठ निंदा, साधु संग बिदारना। नाम जपत मन निर्मल हो, वह सुख है सुख गुदारना। भगत शरण जो आवे प्राणी, तिस इहा उहा नहारना। सुख दुख इस मन की वृथा, तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का, आपन क्या पालना। अनेक बार कोट जन ऊपर, नानक व नैवारना। राम कली महला पंजवा, अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर्त्यो देह मिलाई। मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए। अंत लहे सखाई रहाओ, सगल दुख का डेरा पन्ना। संत तूर मुख लाई, पतित पुनीत किए खिन पीतर। अज्ञान अंधेर बनाई, करण कारण समरथ स्वामी। नानक तिस शरणाई, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए। एक शबद लिवलाई, अंधकूप बिखिया ते काड्यो। साच शबद बन आई, जन्म मरण का सहसा चूका। बोहड़ कतु ना ताई, नाम रसायण ए मन राता। अमृत प्री तृप्ताई, संत संग मिल कीर्तन गाया। नह चल वस्या जाई, पूरे गुर पूरी मत दीनी। हर बिन आन न पाई, नाम निदान पाया वड पागी। जन नानक नर न जाई, काल सियाणप उकत न मेरी। पूरे गुरु ऊ कमाई, जप तप संयम सुच है सोई। आपे करे कराई, कलत्र महा बिखिया में गुरु साचे लाए तराई। अपने जीते आप समाले, आप लिए लड़ लाई। साच तरम का बेड़ा बांधिया, पवजल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी, नानक बल बल जाई। अकाल मूरत अजूनी संभो, कल अंधकार दीपाई। अंतर जामी जीअन का दाता, देखत त्रिपत अगाई। एकंकार निरंजन निरपो, सब जल थल रहा समाई। भगत दान भगता को दीना, हर नानक जाचै माई। राम कली महला पंजवा, लोक तिखो सबद प्यारे। जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी। नानक सिमरत एक, मंदन राता राम प्यारे। हर प्रेम भगत बन आई, संतो सतगुरु खेप निबाही। संतो राम नाम लाहा, दास को दिया सगली कृष्ण उलाही। संतो रहाओ खोजत खोजत, लाल इक पाया। हर कीमत कह न जाई, संतो चरण कमल स्यों लागो त्याना। साचे दर्श समाई, संतो गुण गावत गावत पय निहाला। हर सिमरत त्रिपत अगाई, संतो का आत्म राम रविया। सब अंतर
कत आवै कत जाई संतो आद जुगादी है भी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो नीच साजन माल जो बन सुतहर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम सुतहर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा बचकरम राम नाम चितारी कुमन केर महा अत बिखरी गुरुमुख नाक नक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुस्तारी जुस्ते लागे तिना निवारे प्रप्त्यो अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरणी पच बिनसे महा अहंकारी साधु संगत ए फल पाया इक केवल नाम आधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगटी जोत तुम्हारी तुम समरत अकत अगोचर रवैया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी।

नाम जिन के मन तन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिसिया है वडियाया कह नानक सुनो संतो शब्द करो पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द चित कर सबागे शब्द वाजे कला चित करतारिया पंच दूत तुदवस्ती कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे।

कर कृपा जिन नाम लाए ते हर हर सदा त्यावहे जिसनु कथा सुना है अपनी सो छे गुरु द्वारे सुख पावहे कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावे तिवे चलावे एहु सेहला।

लगे जिना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंदिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है ए वडदाता जे अगन में आहार पहुंचावे उसनु केहे सोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरुमुख सदा संभाली है कह नानक ए वडदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया माया अगन सबको एक है जे ही करते खेल रचाया जाते सपाना ता जमया परवार पल्ला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजय पाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचय माया पाया हर आप अमोलक है मूल न पाया जाए मूल न पाया जाए किसे विटो रहे लोक विल्लाए ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर स्यों पिए विच्चो आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप अमोलक है पाग तिना के नानक का जिन हर पल पाए हर रास मेरी मन वन जारा हर आप अमोलक है पाग तिना के नानका जिन हर पल पाए हर रास मेरी मन वन जारा हर आप अमोलक है पाग तिना के नानका जिन हर पल पाए हर रास मेरी मन वन जारा हर रास मेरी मन वन जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपो जियो लाह कटो दिहाणी एतन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वन जारा ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न

नृसिंह तुधों सुरदास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पाघीन जम पास, जो सतगुर शरण संत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवा। जिन हर जन सतगुर संग सपाई तिन सुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संत जिस रस।

कोई न के सी धरिया से सर विघ्न संवाही ठाकुर काहे मन पौ करिया उडे उडावे सह कोसा तस पाछे बच विचरिया तिन कौन फलावे कौन सजावे मन में सिमरन करिया सबन दान दस तस्दान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए ग्रंथना पारा वरिया रागासा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सब गुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन अरगमा अगमा पारा सब चावे तुलजी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दारा हर चावो संतो जी सब दुख सारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेख जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाणा एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चो जो डाणा तू आपे दाता आपे भुखता जी हो तुद बिने अव न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आसो खाना जो सेवे तुर जी जन नानक तिन कुरबाणा हर थ्यावे हर थ्यावे तुर जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरपो जिन हर निरपो ध्याया जी तिन का पौ सब गुआसी जिन सेवया मेरा हर जी से हर रू समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत तेरी

यन को करे हर पूजा जी तब सापे जते व्यंता तेरे नेक फड़े वो सिमरत सास जी कर क्रिया कट कर्म करमता से भक्त भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परम पुरकर्ता जी तुर जे वड़े और न कोई तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता कोई तुझे आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई तुझे आपे सेठ सब पाई।

देह कोई हो पाई रहा हो। सब तेरी तू सब नीच आया, जखनो कृपा करे तुम नाम रतन पाया। गुरमुख लाता मन मोह गवाया, खुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

जसरी सबो भाग जयंती सही अमरी करवा जय रक्षा पूर्ण इच्छा सब चरणन में रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दोस्त सबे तुम कहो आप बिचारो सुखी बसे मोरो परवारा सबे सरकारा मोर अच्छा मिल कर जय करिए सब भैरम को आइए पूर्ण हमारी आशा तोर बहन की रह देता तुम्हें चार कोई और न चाहूँ जो बर चाहो सतम के पाऊँ सेव कसे तो हमारे कार्य है सतम शत्रु हमारे मारिए आप आते मुझे।

दुख रोग शंका सुने सची वाणी संत साजन पै प्रश्न पूरे गुर के जानी सुनते पुनीत कहते पुवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर।

जसका सबस दारू जे को खावे जे को पुंचे किसका होयो धारो ए वस सजी न जाई नेत नेत राख्योर तारो तम संसार चरण लग परिये सब नानक ब्रह्म सारो लोक महला।

संजम कृष्णा सूझे हे जतन काट कल काल राव आद अंत दयाल पूर्ण इस बिना नहीं कोय जन्म मरण वारा जप सिमर स्वामी सोए वेद सिमरत कथे सात पस करे विचार मुक्त पाइए साध संगत बिल्कुल।

साधु संग भजो गोपाल आन संजम कृष्णा सूझ जतन काट कल काल रहाउ आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोई जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए वेद सिमरत कथा सासत भगत करें विचार मुकत पाई साध संगत बिन सजाई अंधार चरण कमल आधार जनका रास पूंजी एक तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेक चरण कमल आधार जनका

मन जब पैंस नाम हरे को तोड़ देव भक्ति में सफर हर साथ करे रहा हो हर हर नाम जब पे हराते फिर उपाय करे फिर जो दर्शन भी करे जो पानी न हरे खेन फिर नर न रहन गावे मुख बोले नर नर हरे पंच दो प्रसाद नगर में एक खेन पल दूर करे बड़भागी हर नाम त्यावे हर के भक्त हरे जनकी संगत दे प्रभ जाचो में मूल मुक्त निस्तरे कृपा कृपा धार जग जीवन रख ले वो शरण पर नानक जन तुमरी शरण आई हर रखो लाज रहे नट महला चौथा आराम जप मन रामे नाम रले राम नाम जपो गुरबचनी हर धारी हर कृपल रहो हर हर हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मेल सल सल हर के संत मिले राम रस पाया हम जन के बल बल ले पर गोतमर नाम जन गायो सब दास दुख दल ले विच दही दो कसाद पंच धातु हर की एक हिम पर ले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सज कमले उनमें कान कान कान हर गर्जे मन भिक्षे मोर मुरले हमरे स्वामी लोचन लाई हम जीवे देख हर मिले जा नानक हर अमल हर लाए हर मेलो अंग भले नाथ मोहल्ला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसाद हर नाम त्यायो हम सतगुर चरण पखे रहो उत्तम जगनाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे सुमट पुख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन संग बसे निम बिरका गुण चंदन के बसके हमरे अवगुण बिख्या बिखे के बो बार बार निमके अवगुण यारे पात्र पारे।

जय तूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभु कह न सके हम तो वड पुरख वडगे जनान को दया प्रभु तारो हम सेवे तुम जन पगे नट मोहला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम बने जगनाथ कृपा प्रभु धारी मत गुरमुख नाम बने रहो हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने किरविक पाप नाम हर काटे शिव के चक्र सामने तुमरी उपमा तुम ही प्रभु जानो हम कह न सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभु तुम ही गुण जानो प्रभु अपने माया भाज मन भो बंदे हर जप्यो फुल फुल ने जो जल कुंच तदवे बंद हर के प्यो मुख मुख ने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुमको जो जुग जुग ने तुमरी था पाई नहीं पावे जनान के प्रवरणे नट मला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रवकारी लग सतगुर हर जपने रहो हर तुम अडगम गोचर स्वामी सब त्यावे हर रुणे जन को तुमरे वड कटा खे थे गुरमुख हर चमने यो प्रपंच किया प्रभु स्वामी सब जग जीवन जुगने जो सल सल उठे बोलहरी मेर सल सल समने जो प्रभु किया सो तुम ही जानो हम न जानी हर गहने हम भार कौर दियो सुधारो हम करे प्रभु सुनने चुम तुम जलने धर्म सरोवर जो सेवे सफल ने जनान हर हर हर बाचे हर देवो कर कृपण नाथ नारायण भला चौथा प्रसाद एक ओंकार सदगुर प्रसाद मेरे मन से सबल हर काल ले गुर पग रेन हवाल सब दास पंच दुख दाल हर हो नगर निहाल राव हर का गृह हर ज आप तुआरो हर रंग रंग मैल बंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप गुरे आयो हम हर की गुर की है बसीटी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपसे की खबर दुर पाई मन तने आनंदो आनंद पे हर आपसे सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले पे गोसान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मान मेल संत संगत सुखवंती सुन कत कथा सुखवंती सब किल बिग पाप लहंती हर हो लिख लसंती राव हर कीर्त का जुग वेची उत्तम मत गुरमुख कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन ए जन के हो कुर्बानंती हर गत कथा का जन रस पचास्या के जन सब कूपल हंती नानक जन हर कथा सुन सुते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई अंश ना वे हर की गाल किसको बल बल बाल तो हर जन है पल पाल हर हो हर का मार गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कवट चुकावे मेरे गुर सिखो ने कवट कमाओ हर की हर काल निहाल निहाल निहाल हे गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन हर प्रभ जाने हो मेरा नाल जा नानक मत हर प्रभ दीनी हर देख नित दूर निहाल निहाल निहाल निहाल रघुनाथ नारायण महला पंजवा।

ज्ञानी सोई जम तेरा जिस उपर त्यावे कृपा करो जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुरत्यावे कवन जो कवन ज्ञान ध्याना कवन गुनेरी जावे सोई जन सोई निज भक्ता जिस उपर रंग लावे साई मात साई भुख्यान जितन मुख न पसरावे संत संग लाग इहो सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखो चजमा मंगल रूप किश आन नहीं दिसावे कहो नानक मोर्चा गुर लायो कै गर्भ जोन कह आवे नाथ नारायण महला पंजवा द्रौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अलानो मैं कहो न दियो मन मीत सहारो कियो रहो आज्ञा मान जान सुख पाया सुन सुन नाम तारो जियो यार तुम ही के गुर ते मंत्र दृढ़ियो जब ते जान पाइये बथा तब कुशल के प्रभ थियो जब ते जान पाइये बथा तब कुशल खेम सब थियो सा संग नान पुरगास्यो आना ही रे दियो नाट महला पंजवा जाको पई तुम्हारी तीर जम पीता तुम ती तो पाया निकसी अमे पी रहो तब तुम जानी अमृत मानी तृप्त ज्यो बार कीर मात पिता साजन संत मेरे संत साई वीर खुले प्राण।

माजना पनाद दो, तू माजना पनाद दो, काबल सुनार सिच माजना पाया जाके, तू माजना पाया जाके, काबल सुनार सिच तुम्मा जिन्ना पाया जाके काबिल किनार विच मिट्टी विच मिटनी।

रामदास जी की पावन नगरी जिसकी ज़ियारत करने विच सब धर्मां दे लोग फखर समझते हैं, जिस दे पाक सरोवर विच नहा के कागां तो हंस ते कोई कंचन हो जाते हैं, रहमतां दे सोमे बख्तां दे भंडार सोधी सुल्तान, जिस दे दर तो अमीर ते गरीब सब झोलियां भरा के मुड़ते हैं, कोई भी निराशा नहीं जाता। उस दर की शोभा श्री कुलदीप मानक जी पेश कर रहे हैं।

श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सर्वंश दान के कारना में पढ़ के दुनिया के दानी दंग हो जाते हैं। सर्व कला समरथ के सारे गुणा संपन्न कलगी धार के अनोखे से अदुत्ती दान बारे इउं जिक्र किया जाता है।

हे भाई, ये सदा कायम रहने वाला हर नाम धन गुरु की शरण पैसे हासिल करो। परमात्मा वालों वर्ती रजा अपने भले वास्ते जान के सहारो।

प्यारे श्रोतियो, सन 1984 दा साल सिख कौम दे इतिहास विच 18वीं सदी दे कल्लूकारियां नूं भी मात पाउंदा है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने सिखां दे सर्व उच्चतम अते रूहानी केंद्र ते हमले दा नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार भाव नीला तारा

हिंदुस्तानी संविधान की धारा 352 है। गवर्नमेंट नूं चलाउण दे सारे हक अपने हाथ विच लै लै। इस षडयंत्र विच उसका सब तो बड़ा सलाहकार भी उसका छोटा पुत्र संजय गांधी जिसने

0: जून की रात 11 बजे के करीब सानू मिलिट्री कैंप विच ले जाया गया। साढ़े पहुंचने तो थोड़े समय बाद ही गोलियां चलन की आवाज सुनाई दी। असी सारे वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पे। असी सारे एहो सोच रहे सी कि कंपलैक्स अंदर तो बच गया सी, पर हुण नहीं बचते। पर दूजे दिन 7 जून सवेरे पता लगा कि दो नौजवान कंध टप रहे सन, उन्होंने गोलियां मार के मार दिता गया है।
1: श्रोतियों, मेरे सूत्रा अनुसार भावे बहुत कार्यकारी सेवादार अपने बचाव के हर वसीले की भाल विच सन, पर

जिन घर वसिया कंत जिनके कंत दिशा पूरी ते अहनस फिरें जलंत पौड़ी आपे बख्शे दया कर गुर सतगुर बचनी अन दिन सेवी गुण रवा मन सच्चै रचनी प्रभ मेरा बेअंत है अंत किने ना लखनी सतगुर चरनी लगिया हर नाम नित जपनी जो इच्छा सो फल पाए सी सब घर विच जचनी।

राम ना जपहु कमल मत लागे, मर जाए बे कहो क्या करो अपागे रहाव। दुख सुख कर कै कटंब जीवाया, मरती बार इक तर दुख पाया। कंठ गहन तब करन पुकारा, कह कबीर आगे ते ना सम्हारा। सूही कबीर जी थर हर कंपै बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। रहन गई।

हंस चलिया काया कुमलानी कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा क्यों रलिया मान बाज पतारा काग उडावत पुजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सरानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तै खटिया कहां गवाया चलो सताप दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फरमान दरगाह का आया रहाओ करो अरदास गाम किश बाकी लेओ नबेर आज की राती किस पी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गजारो साध संग जाको हर रंग लागा तन तन सो जन पुरख सुभागा ईत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल धन जोरिया भया पराया कहो कबीर तेई नर भूले खसम बसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी एक ना थाक समाया बावरे तै ज्ञान विचार ना पाया बिरथा जन्म गवाया रहाओ तब लग प्राणी तिसे सरेव हो जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाव ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत को तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारह ताल जो जान पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा।

सांज परी दह दिस अंधियारा कहरव दास निदान दीवाने चेत सनाही दुनिया पन खाने सूही ऊचे मंदर साल सोई एक घरी फुन रहन ना होई इह तन ऐसा जैसे घास की ताटी जल गयो घास रल गयो माटी रहाओ भाई बंद कटंब सहेरा ओए पी लागे काट सवेरा घर की नार उरह तन लागी ओह तो भूत भूत कर भागी कह रवदास सबे जग लूटिया हम तो एक राम कह छूटिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही बाणी सेख फरीद जी की तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरो बावल हुई सो सहो लोरो तै सह मन मह किया रोस मुझ अवगन सह नाही दोस तै साहिब की मैं सार ना जानी जोबन खोए पाछै पछतानी रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हों बिरह जाली बिरह बहून कतह सुख।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाऊ, जो किछ हुआ सब किछ तुझते, तेरी सब असनाई।

कहाउ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल महियल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी जो तुद भावे सोई चंगा एक नानक की अरदासी बिलावल महला।

जाचक तू अलख अपेओ रहाओ माया मोह तर कटी नार पुंडी कामन कामन यार राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चानन अंधियार चख छोड़ी सहसा नहीं कोई बाप जिसे वे जात ना हुए एक एक नाही पौ कोई करता करे करावे सोए शब्द मोए मन मन ते मारिया थाक रहे मन साचे तारिया अवर न सूझे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुरबचनी मन सहज ध्यानी हर कै रंग रत्ता मन मानी मनमुख भरम भुले बहुरानी हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर बिन जियरा रह ना सकै छिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ मेरा प्रभ बिसरै हो मरो दुखाली सास ग्रास जपो अपने हर भाली सद बैरागन हर नाम निहाली अब जानी गुरमुख हर नाली अकथ कथा कही है गुर पाई प्रभ अगम अगोचर दे दिखाई बिन गुर करनी क्या कार कमाई हो मैं मेत चलै गुर शब्द समाई मनमुख विछड़ै खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा धारी दासन दास जन नानक हर नाम धन रास बिलावल महला तीजा कर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कटंब सहत सिंह जित हुण खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे पहला जन्म गवाया दूजा भाऊ ना दे लिव लागण जिन हर के चरण वसारी जग जीवन दाता।

संत विचारे मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख होए सो मुक्त कही है मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावन महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा हुए ता सोजी पाए किस ते दूजा नाही कोए किस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वसै मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब त्रिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिस आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव धात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आप।

तू कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब में है एक समाना सतगुर परचै हर नाम समाना जिस कर्म हो सो सतगुर पाई अन दिन लागे सहज ध्याना रहाउ क्या कोई तेरी सेवा करी क्या तू करे अभमाना जब अपनी जोत खिंच है तू स्वामी तब कोई करो दिखाव खियाना आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी नदाना ज्यों आप चलाए तिवें कोई चाले ज्यों हर भावे भगवाना।

सत नानक ओत निहार कहां तुच्छ प्रभ बुद्ध कुमारी वर्णन सके महिमा जो तुम्हारी हम न सक

चले शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लख बदरो सुन जो काल कृपा कराए ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी

बड़े मन में करू पर्वत पंखले न हलेंगे तोर हरी मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपावन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार बचारे सार की तार बसैया तोर तदेश मलंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गुड़ान को तोड़ नहार सो बात नहीं जग चार लवैया साहेब श्री सब को सरनायक जाच का नेक सो एक दवैया दानव देव फनंदन साचर पूत भविख भगवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन पर तापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सदर सब अब लोग छपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रलोक को राज करेंगे कूट स्नान गजातिक दान अनेक सोम बरसाज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जम फास करेंगे जे नार श्री पत के पर सैं पाग ते नार फिर न दे तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कहे बैठ रहे हो भगत ध्यान लगायो नहात फिर लिये सात समुन्द्र न लोग गए उपर लोग गवायो बास की बख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कहो सुन ले सब है जन प्रेम की हो जन ही प्रपायो काहू ले पाहन पूछ दर सिर काहू ले लिंग कर लटकायो काहू लखवार वाची दिशा में काहू पछा को शीस नवायो कौ बदान को बूझद है बास कौ मृदान को बूझण दायो कूर करे और जो सभी

प्रभु का स्मरण सब ते ऊंचा, प्रभु का स्मरण उदरे मोचा, प्रभु का स्मरण तृष्णा बुझाए, प्रभु का स्मरण सबके सुझाए, प्रभु का स्मरण नाही जाता सा, प्रभु का स्मरण पूर्ण आशा, प्रभु का स्मरण की मर जाए, अमृत नाम हृदय समाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक।

से माता जे प्रभु को सुमरे से सर्व के राजे प्रभु को सुमरे से सुखवासी प्रभु को सुमरे सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जने आव दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभु को सुमरे से परोपकारी प्रभु को सुमरे संसार बलिहारी प्रभु को सुमरे से मुख सुहावे प्रभु को सुमरे तन सुबिहावे प्रभु को सुमरे तन आत्म दीता प्रभु को सुमरे तन निर्मल दीता प्रभु को सुमरे तन नंद कनेरे प्रभु को सुमरे बसे हर मेरे संत कृपा ते अंधंजा नानक सिमरन पूरे पाप प्रभु का सुमरन कार्य पूरे प्रभु का सुमरन कबू ना चूरे

छोड़त नहीं कोड़ला पाही नाव जवत पार पराय अनक धरन जय संघारे हर का नाम तत्काल उदार अनक जो जन्म मर जा नाम जल पावे विश्राम।

सीखित मन हर के नाम की महिमा हो जनार्क नाम उदरे पते बहुमोच बहुत ज्ञान वचन का पौ व्याप्यंक जतन का तसन्ना त्रप है एक अनेक अग्नि बुझे कोट पर दर्गन नित जय सूर सुनाई उपया मो व्याप माया जाल और कर तू सौ

समझा करत अभिमान। हास को जो जाने नीचा सो गनिये सबसे ऊंचा, जाका मन हुए सर कीरीना, हर हर नाचन खट खट चीना। मन अपने से बुरा मचाना, पेखे सर से सरना, सुख दूर जन समझ से ताना, न पाप मिले पा। निर्धन को धन तेरो ना, उन छावे को न तेरा थाओ, निमाने को तो तेरो मां, सर कटा को देवो दान। करम करावन हार स्वामी, सर कटा के अंतर जामी।

पार रतन त्या कोडी संग्रत साचो चोर संगमत है जो छना सो अफर कर्मा ने जो हो सो दूर पर छोड़ जाए तो उसका श्रम करा संग

बर्तन स्वागर पत्थर कैसे तरया था, जहाँ कह अंतर बस प्रवाह नानक तेजा सुमार, सुन अंधा कैसे मारे।

आई, मिथ्या तंता कुटुंब सुवाया, मिथ्या हमें मनता माया, मिथ्या राजवंता मान, मिथ्या कम क्रोध विकराल, मिथ्या रथिया सुवस्त्रा, मिथ्या रंग समाया पे खर्चा, मिथ्या तुम हो अभिमान, मिथ्या आप सो प्रकट गुमान, आश्र कल साध की शरणानक जप जप जी वह हर के चंद, मिथ्या संपन्ना सुने मिथ्या पर दो को रे, मिथ्या नेत्र देखत पर तर पाद, मिथ्या सुने पूजन सुहाग, मिथ्या तन पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोग लबावे, मिथ्या तन नहीं पर विकारा, मिथ्या वासलित बेकारा, बिन बुझे मिथ्या सब सब देह नान कहार हर नाम ले, बिरछी सागत की आज साधना कहो सूचा, बिरछा ना बिना

कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद सती अमृत का तथा कर रथ मन माए जे प्रसाद सुगंध लावे तुझको स्मृत पर मंगल पावे जे प्रसाद बसे सो मंदिर तुझे प्यार सदा मन अंदर जे प्रसाद रह संसो बसना आठ तार सुमरो तस रसना जे प्रसाद रंग रखो नानक सा त्याया त्यावन जो जे प्रसाद पार पटम रह डावे तुझ का तोर लगावे जे प्रसाद सोसे सोई जे मनाट करता का जस गावी जय जे प्रसाद तो सो कुमा ने मोता को जस सन बखाने जे प्रसाद तेरा तात्र मन सा त्याय केवल पारगम प्रभु जी जंतर गए मान पावे नानक पासे चिकर जावे जे प्रसाद लोकन चंदे लूला उत्तरा स्नेही जे प्रसाद तेरा और लय मन सो पावे हरा जस कह जे प्रसाद ते सो सीता के मन शनि पाठा पर परता कह जे प्रसाद तुर को न पहुंचे मन सो सास मेरो प्रभु ते जे प्रसाद पाए दुर्लभ देह नानक ताकि भक्त करे जे प्रसाद अपुखण

अस्परी सबका सम खुजल हो सब समस लिखो सबका समझ अभिमान सबका सम पढ़ते सो ज्ञान सबका सम बुझे प्रवनेरा सब सौतन बेरा साल कसम पाए नाम रतन साल कसम गे ऊपर जतन साल की महिमा बरने कौन प्राणी स्नान साल की शोभा प्रमा सुमानी साल कसम गोचर में रह साल कसम सदा पर फुल साल कसम गावे बस पंचा साल संग अमृत रस पंचा साल संग सब किए साल

प्रसन्न सत्संग सुन समी साधु के समापनी सत्संग के सुन सत सुन बिंगा पै सक सुनाई को मंदा सत्संग जाने परमानंदा सक सुनाई सक सुन तया सवा हाथी जाने सत बढ़ाई नान सतो बनियाई सक सुन कभू पावै सक सुन सदा सुख पावै सात संग बस सगो चले साधु कैसा नजर सह सात कसम बस थानु चह साधु कैसा महल पहुँच सात कसम लड़ा सतरंग सात कसम केवल पार बन सात कसम पाए नाम निदान साधु के कुर्बान सात कसम सब को लोदार है सात कसम साधु मीत को चंद सार है साधु कैसा सोतन पावे जे संत सब को वरसावे सात कसम धर्मराय करे सेवा सात कसम शोभा सुर देवा साधु कैसा पाप लायन सात संग अमृत गुण गायन सात कसा सर्वथान गम नानक सात कसा सवचनम सात कसा नहीं कसका दर्शन पेड़ तो तनिहार सात कसा कलोख तर सात कसा नर पर हर सात कसा नहीं आवा सोला सात संग विश्व कर मेला जो इच्छा सोई फल पावे सात कसा नंद था जावे पार ब्रह्म सात रिद वसै नानक कुदरै सात सौ रसै सात कसम सुनो हर नाम सात संग हर के गुण गाओ सात कसम नमन ते विसर सात संग सब पर निस्तर सात कसम लगे प्रमिठा साधु कसम कर कर जीठा सात संग पर आज्ञाकारी सात संग सही हमारी सात कसम बटे सौरव नान सात पेटे संजो सात की महिमा वेदना जाने जता सुन ते ताल ख्या नहीं सात की उम्मा से गुण ते दूर सात की उम्मा रही भरपूर सा की शोभा का नहीं अंत सा की शोभा स्वाभ्यंत सा की शोभा उठे उची सा की शोभा मुझते मुची सा की शोभा सात बनिया इना न सौ तो फिर न पाई सलो मन साचा।

का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञान के कृपा समाह ब्रह्मज्ञानी परोपकार उमाह। ब्रह्मज्ञानी कहना ही चंदा ब्रह्मज्ञान लेता बंदा। ब्रह्मज्ञानी कहो सफला ब्रह्मज्ञानी सोल फला। ब्रह्मज्ञानी सफल उदाहरण ब्रह्मज्ञानी धरे सब संसार। ब्रह्मज्ञानी संसार उदार नानक ब्रह्मज्ञानी।

बहुत त्यागत ब्रह्म धनिक अमर परमानंद ब्रह्म धनिक कसा अनंत ब्रह्म धनि सोचा नवात्मा ब्रह्म धन का नहीं विनाश ब्रह्म धनि ब्रह्म का वेता ब्रह्म धन एक संहेता ब्रह्म धनि का हो अत्यंत ब्रह्म धन का निर्मल मन ब्रह्म ज्ञान निष्कर प्रवाह ब्रह्म ब्रह्म धनि का बड़ प्रताप ब्रह्म धन का सत्पुरता की पाइये ब्रह्म धनि को बल बल जाइए ब्रह्म धनि को खोजे महेश नान ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म धन की क्यों तनाए ब्रह्म धन का सर मन माए ब्रह्म धन का कौन जाने फिर ब्रह्म धन को सदा आदेश ब्रह्म धन का कथन जाया दाखर ब्रह्म धन सर्व का ठाकर ब्रह्म धन की मत कौन बखाने ब्रह्म धन की गत ब्रह्म ज्ञान ही जाने ब्रह्म धनि कांत ना पारनाथ ब्रह्म धन को सदा नमस्कार ब्रह्म धनि सब सिद्ध का करता ब्रह्म धन सजीव नहीं मरता ब्रह्म धनि मौजूदी

आपे कणकण जो प्रताप सोई सुन हो पसरो आपो अंतरंग लखन जाए पारगम किरण जैसी मध्य तस अप्रगास पारगम करता बनाथ सदा स्वास्था दया सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक उस्त करे अनेक जन अंत न पारा बार नानक रचना प्रवृत्ति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बांध भ्रमण उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपिस्त्र होते हैं कई कोट आत्म ध्यान तार हैं कई कोट कवका विचार हैं कई कोट न सनाम त्याव हैं नानक करते कांत न पाव हैं कई कोट पैव मानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अफेगा तमने कोर कई कोट पर दल को है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया शर्मा है कई कोट प्रदेश प्रमाए जिद लाओ तर नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस होगी कई कोट पंखी सर्पो पाए कई कोट पात्र दृख निप जाए कई कोट

धन्यवाद। जाका कहो नाया जा को अपने करे बख्शी ताका लेखा ना गंजो दीस जियो पर सत की रात सकर को बन प्रगाश अपनी ममता बनाई नाना जीवे देख बढ़ाई इसका बल नहीं है साथ कम प्राण सर को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो छुपा सोई फोन थी हो कबू ऊंच नीच।

क्रोध करा तू सर्व की हो तरवार। कबू होए भय बड़ राजा को पिखारी नीत का साजा। कबू अकीर्त में आवे कबू पला पला कहावे। जो पव राखे तिम ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह। कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोहन तारी लावे ध्यान। कबू तर तीर्थ स्नान कबू से साधन हो ज्ञान। कबू की रस पतंग हो जियान कजोर पर में फरमिया। नाना रूप जो स्वागी दिखाए जो प्रपावे तन चावे। जोत पावे सोई हो नानक दूजा न कोए। कबू सा संगते पावे सत्संग को न आवे। अंतर हो ज्ञान प्रकाश सत्संग का नहीं विनाश। मन तना वृत्ते करंग सदा बस है पार ब्रह्म कह संग। ज्यों जल में जलिया खजाना च्यों ज्योति संग जो समाना।

जाए पसमन किसी नाम दे आप अहंकारी धर्म राय तस्करे खुआरी गुर प्रसाद जा काम दे अवमान सो जानान धर गए परवान कोट कर्म करे हम तारे संपाय सले बिरथारे अंत पत्या करे अहंकार नरक सुख फिर अवतार

महाकारी शंका दुखी सुरा दिखाई, शंका दुखी जन्म मर संकी दो न सोते डर, संक दुखी को नाई ठाओ नान संपाल तलय मिलाई, संक दुखी अदबी ते टूट संका दुखी किसे काय न पहुँच, संका दुखी को ध्यान फरमाई है, संका दुखी उजड़ पाई है, संका दुखी अंतर ते थोथा जो सास बना मृत्य की लोथा, संके दुखी की जड़ सुनाए अपन जा पे ही खाए, संके दुखी को बना रखना नान संपाल तलय उबार, संका दुखी यूं बिललाए जो जल बिहोन मछली तड़फड़ाए, संका दुखी भूखा नहीं राजा जो पाव की दम नहीं त्रापे, संका दुखी सुते अकेला जो बुहार पर खेत माए दुएला, संका दुखी तरम से रह संका दुखी शर्म त्या कैत, कितनंद का तुरही पया नान जो सुपावे सोई थिया, संका दुखी बिगड़ रूप हो जाए संके दुखी को धर घर में सजाए, संत का दुखी सलाह सह करिए संत का दुखी नाम रहना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा न आशा संत का दुखी और चले निराशा, संत के दो न तुझसे कोई जैसा पाए तैसा कोई हो, पया कृष्ण में से कोई ना न जाने सच्चा सोए, सौ कर सच के यो करने आ सदा सदा।

तो मरे लगी सा प्रवान, जिसनो लाई च तैस लगे लगी ता प्रवान, फिर मैं कामना निकल है लाया तेन सुजान, भांडा धोई बे कौन, जे कच्चा साजिया पाचू धातु पंच रलाई, कूड़ा पाजिया ता भांडा अणग रास, जे जात भावसी परम जोत जगाई बाजा वापसी, मनो जे अंधे कूप कहे बिरद न जाननी, मन अंधे ऊंधे कबल दिसन खरी करूप, एक कहे जानन कहे बुझन ते न सुगड़ स्वरूप, एक ना नाद ना बेद ना गी रास रास कस ना जानंत, एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अखल सारे अखर का प्यो ना लहंत, नानक ते न रसल खार जे बिन गुण गर्भ करंत, सो ब्राह्मण जो बिंदा ब्रह्म जब तो संयो कमावे, कर्म शील संतोख का रख धर्म बंधन तोड़े होव मुक्त, सोई ब्राह्मण पार पूजन जोगत, खत्री सोज कर्म का सूर पुणदान का करे शरीर, खेत पछाणे बीजे दान सो खत्री दरगे प्रवान, लभ लोभ जे कूड़ कमावे अपना कीता आपे पावे, तन न तपाए तनूर ज्यो बालन हड न बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी संभाल, सबनी कटी सौ वसै सा बिन घट न कोई, नानक ते सुहागनी जिन्ना गुरमुख प्रगट होए, जाओ तो प्रेम खिलन का चाऊ सिर तर तली गली मेरी आऊ, इत मार्ग पैर तरी जय सिर दीजे कान न की जय, नाल कराड़ा दोस्ती कूड़ै कूड़ी पाई, मरण न जापे मुलिया आवे कित थाई, ज्ञान हीण अज्ञान पूजा अंध बरदावा भाउ दूजा, गुरबिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी, मूलो न बाकी माणू कल्या उठी चलै साधना ही, अवे ही गल है स राम चरै दल के मेल वै सार, अंतर बल अधिकार बंतर की सेना सेवी है मान तान जो जपार, सीता लै गया दह सरो लक्ष्मण मूह सुरापू, नानक करता करण हार कार विखे थाप थाप, मन में झूरे राम चंद सीता लक्ष्मण जोग, हणवंतर आराध्या आया कर संजोग, भूला दैतना समझई तेन प्रभ किए काम, नानक वे प्रवास कीर्तन मिटई राम, लाहौर साहर जहर कहर सवा पहर महला पहल तीजा, लाहौर शहर अमृत सार सिवती दा कार, महला पहला उदो साहे किया निमाणी, उदो साहे किया निशानी टूटना आवे अन्नी, उदो सी करे ही उठे कूड़ी रन्नी तम्मी, सती रन्नी करे सिया पारोबन कूड़ी कमी, जो लेवै सो देवै नाही खटे दम सहमी, पब्बर तू हरियावला कबरा कंचन बन कै दुखड़े, सड़ियो हे काली होई देहोरी नानक मैं तान भंग, जाना जान नानक जाना पानी नाल है, जय जय सीती मेरा संग, जित जिठे तन पर फड़े चढ़े जवगन बन, रज ना कोई जीव्या पहुंच न चलिया कोई, जो सोई ज्ञानी रजना कोई जीव्या पहुंच न चलिया कोई, ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती पत हुई, सरफे सरफे सदा सदा आई वे गई बिहाई, नानक किसन आखीए बिन पुछा ही लै जाई, दोष ना देहे राय नो मत चले, जा बुढ़ा होए गल्ला करे कनेरिया, ता अन्ने पवना खाती टोवे पूरे का किया, सब किस पूरा घट वध किस नाही, नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाही। श्लोक महला तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद अभ्यागा तेह नाखी आहे, जिनके मन में भरम जिन के दिते नानका, तेहो जिहा धर्म अपै निरंजन परम पाद, तांका भीख कहोई तिसका भोजन, नानका विरला पाए कोई, होवा पंडित जोधकी बो वेद पढ़ा मुख चार, नवा खंडा विच जानी अपने चज विचार, ब्राह्मण कैली घात कई कार जानी अणचारी का थान, फिटक फिटक का कोट वधिया सदा सदा अभिमान, पाप पाहे जेहे जा पाहे इत जाहे विसर, नानका सब नानका एक नाम, सब बुद्धि जाली एक रहे अतत ज्ञान, माथे जो तर लिखिया सो मेट न सकै कोई, नानक जो लिखिया सो वरतदा सो बूझै जिसनो नजर होए, जिन्नी नाम विसारिया कूड़े लालच लग, तंदा माया भूमि अंतर तिशना अग, जिन्ना वेलना तू बड़ी माया ठगे ठग, मनमुख बन चलाई है ना मिली वग साग, भुलाए
ਆਪ ਭੁਲਾਈ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਿਣਾ ਭੀ ਸੱਚਾ ਸਾਲਾ।

उदार। ज्यों सुपन आयर पेखना ऐसे जग को जान, इन मैं कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत, कोटन मैं नानक को नारायण जे चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजय बिन सनीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुनमीत। प्राणी कछु न चेतई मद माया कै अंध, कहो नानक बिन हर भजन परत ताई जम फंद। ज्यों सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुनरे मना दुर्लभ मानक दे। माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन वृथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोबिंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया कै अंध, कहो नानक हर भजन बिन परत ताही जम फंद। सुख मैं बहु संगी पाए दुख मैं संग न कोए, कहो नानक हर भजन अंत सहाई होए। जन्म जन्म पर मत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपय पावें बास। जतन बहुत मैं कर रहयो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक भदयो राख ले भगवान। बाल जवानी अर बिरद फोन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बैन बिरथा सब ही मान। करणो हुतो सुना कियो पर्यो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोबत अंद। मन माया मैं रम रहयो निकस नाह न मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों शाडत नाह न पीत। नर चाहत कछ और की और पई, चित बत रहयो ठगौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए, कहो नानक सुन रे मना हर भावे सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरते पूर्ण होवे काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज जान, इन मैं कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह कहो बिन सैशन मैं मीत, जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत। जे काट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नार हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जेह प्राणी कह नाहे मान, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तान। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नैत, नानक हे बिदहर भजऊ एक मान होए एक चित। तीर्थ भरत अरदान कर मन में तरे गुमान, नानक ने फुल जात ते ज्यो कुंचर स्नान। सिर कंप्यो बग डग मगे नैन जोत ते ही ना, कहो नानक हे बिद पाई तऊ न हर दस लीन। निज कर देखो जगत मैं को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तेह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत, कह नानक थिर नार है ज्यों बालू की पीत। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार।

ओथर नहीं कोई जो उपजो सो बिन सहै परों आज कह काल नानक हर गुण गाए ले साड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कछु न होत उपाय कहो नानक अबोट हर गज ज्यो सहाय बल हुआ बंधन छुटे सब किस होत उपाय नानक सब कुछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए को निभ्यो साथ कहो नानक ए बिपत मैं टेक एक रघुनाथ।

किन जपियो गुरमंत राम नाम उर मैं गयो जा कै सम नहीं कोए जे सिमरत संकट मिटै दर्श तुहार होए। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए आधारो एह वास्तव तजी न जाई नित नित रख और धारो। तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा।

एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगण संग लप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम पैरवी बिलावली पुन्य आकी गावै बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंच नारी पंचम हर खोद साख सुनावै बंगा लव मद माधव गावै ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत आष्ट पुत्र पैरव के गावै गायन पात्र द्वितीया माल कौ सक्या लापै संग रागनी पंचो थापै गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी से होती उचारी तनासरी है पंच गाई माल राग कौशक संगलाई मारु मास्त अंग में बारा प्रबल चंड कौशक हो बारा खौ खाट आओ पौरानंद गाई अष्ट माल कौशक संगलाई पुण्य आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठे तन कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सरस अहिरी लै पार जा संगलाई पंच वार जा सुरमानंद पास कर आई चंद्र बिंब मंगल नसोहाए सरस बान आई बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुने आई दीपक की वारी कसीली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंप के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिलो श्री राग वह गावे पंचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी धरी गौरी गावे आस्था भरी तेह पाछ सिंधवी अलापी श्री राग सो पंचो थापी सालू सार्ग सागरा और गौंड गंभीर आष्ट पुत्र श्री राग के गोंड को महामीर खाष्टम मेघ राग वह गावे पंचो संग बरंगण लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आस्था गुन गुनी ऊचै सुर सूह पुन कीनी मेघ राग सो पंचो चीनी

है, बिन सजाए जो निमख महै, सो अल्प सुख पनिय रहो। प्रतपाल अपयाओ दे काछू न होई, सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। अछल अशेद अपार प्रभ ऊंचा जा का रूप, जाप जाप करहे आनंद जान आचार्य अनूप। सामत देह दयाल प्रभ जित तुम है आराधा, नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा। सामत देह दयाल प्रभ जित तुम है आराधा, नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी दे शहीदी पर्व नूं मुख रखदिया होया, अते

नियमख नियमक तुम ही प्रतपाल हो हम बारिक तुमरे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतपालिक नायक खसम हमारे। नियमख नियमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारिक तुमरे तारे। जेहवा एक कवन गुण कही है